0: मंची दरू पौगी दस्ती के मेरी सातुड़ींग अम्मला तेक दहा अते दिवा एवी दा सातुटू ना विनोदो ना
1: मांगवागे
0: ऐते दे
1: यो माता उस कॉले ना
0: स्कॉले ना
1: यो वाली
0: आउट दरने इंटरव्यू करने
1: एक तबाई
0: पोटा केम तीय ना एक न वायस गिया र ताम ही म पासर मानसिक आते गिन्ने के ला बड़ा तेरी ला दिए ना
1: मगे वायस बड़ा गले पे न

0: सट गया थाव सट गेदर रखी हुआ टे आव सट गेदर याने के तमाई अमारुम वैली
1: सलन ललन धलुव विलस नितंब न लोला नितंब न लोला नितंब न लोला
2: इंदाल में इंदाल याना तेरी नवती ना इवनी